0: वैसे दुश्मन।
1: ज़कात की इस्लाम कम के थीम बना रुकूं, ज़कात अनुला अलग ईमान कम पुरी हमें नुवाने, कीरित कुरवान के वर्ग की न आयत का ज़कात के वाह का बयां को रवा फावे, अल्लाह सुबहानहु व ताला वही को रब्बी बस पुल के माना गावनी, फह एवरेन तौबा वे नमा दुकाई मुको ज़कात दी फिनमा, फह एवरेन नकी दीनु का तिय बैम हुंगे अखुन्ने, इंगे बयकत थी मर्रस कलांगे आयत तक तफसील को देवमे विस्ना फिकुर कुरा बयकं इब्रतुम फुरिकें वी आयते जका दिन मुगा फरदी गोतुना इजतिमाई गोतुन नुहणु गिन गुण फायदा तकेबे कुरिन देन नेवुनु फदई अलागे इस्लाम कम फुरि हमवुम मिई वरब बेनुन तिरकम बुडु फायदाए मिहने कोम्मे मुस्लिम की तिमागे ईमान कमा तिमागे इस्लाम कमा आदि तिमागे दीन फुरि हम कुरुमा नुहणु शौगु वेरिवाणी मी हेक्कन यके ज़कात दे मी हाय की तेदवेर ईमान कमु ईमान विगिन वामी है कमुगा इल्म वेरिं बयां को रव्वा कमी उफा वेरि कमा हिंग हम जहुं थिमाया लिबिगें दाने कमी मिहेनी मुदल की ए अट्टका थिमागे नफ्सु दहिवेति विफावा एच्चे वी मा थिमा लो विवा एच्चें हेद कुरवेनी ईमान कमुगे अहुल वेरिनक बयां कुरवनु तेदवेरि कमट्टका ज़कात सोदगा मिनम विस्तेविगें वे ऐ तेदवेरी कमुगे मानागा ज़कात दिनमुगा तिमागे अहुलागी यतं इस्लाम दीनुगा इतुरुगा दरे देविगेंवे
2: हिदायतुगे मगुदा

0: अध्ययन अध्ययन की नवे फति हो रही
1: मेरी और बड़ा हास वे
0: अनेक का टेस्ट तो क्या रवि मता मन्हा मन्हा हाँ द देर वे फाये
1: आहने के वार गया कुछ है आहने न माला में कुरने
0: हास नो अब स्पेल द टी प्रोग्राम अडवे ही मती कहला हुरी हाँ कंका मंहा लोहो दंगे ना
1: स्पेल द टी है
0: आं मिकाहल कंकं दिमावे मा कांतक कुरे विदान गोयतं ए प्रोग्राम उंगे गेने
1: स्पिल द टी हमे कणी दिवे राज्य गाडू
2: आदित्य दो हो गे हवेरो हतरगड फनरागा
3: रिपीट बुद दो हो गे हवेरो हतरगड फनरागा
2: आदि बुडास्पति दो हो गे हवेरो फहद जहाडो
0: एंहा सतरिस देका सालिस नुए किलो हर्ट्स मीडियम वेव अदे अड्डिया नुए मेगा हर्ट्स एफएम बैंड हमें कन दिवही राज्य के अडू इंतजार को लवा
4: स्पिल द टी
5: कोबा आंटी याम की मियार कीने
6: याम की मियार कंगे स्वरंगे हिंग गोता कंग उलेनी मैं बोली इंटरवल कटी का रंगला नुकानी का मिलने गे वारंगा वहाँ निम्माला खाचे उखाला नी का मैं नोनी कुछ जग देनी का मैं विसने गे ऐही मैं विसनु ए बुने इंटरवल कटी का कोम मैं विस ऐहिं का मैं कोले ती बाला ला रो ताची हुन्ना नी हुआ वारे दोसे जमी वहाँ का दाक्का मैं गिंग हुन्ना था
5: ऐहन ता आरुन मेद एन मम्मे आस वहाँ दाक्का लाना क्या मके हव हाँ ती गेद दा दरे फोड़ा, इन्टो लक्की ने हदनी, नोबाई था, की वैहा वाणी मालनी।
7: अस्तु वागो तकी याम की कैरीगा इन्ना आर्शन नुगेन्ना ने इन्टो वाले, दिन इन्ने यंग हाफ देनी, मामा वैसे हैं हदावीला, गे कैरी उले स्मेल बेबे या मामा वैस का ची देने।
5: अच्छा, हाँ बस्सा कुछ के, दिन की अतिवा का आंटी कैरी नो बुनानी। ಇವರು ರಂಗೋಳು ಕಮೆನ್ನು
7: ಬಪ್ಪ ಮಮ್ಮ ಬೋನ್ ಫೋನ್ ನನೆ ಕುಜ್ಜಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಸ್ ನೋನಿ ಎಚ್ ಶೇಯಾ ಕೊರಿಯಸ್ ಎವಾಕ ಎಮ್ಮೆನ್ ಕಾರಿನು ದಕ್ಕಣೆಯ ಮಿಹಕ ನೆಚ್ಚ ದಿಂಕಂ ಕಾಣಾತು ವಾತ ಒಬ ಸಿಂಗೆನ್ ವಾಣೆಯ ಏರುನೋಗಿನ ಸವಾಬಲೆ ಬೇಡಿ

0: आज मैं रिकॉर्डिंग नुआगढ़ फंसा स्नोमेट गायड का दिहे जी इंगे तो दिहे जी और मैं राजा एक अंगोल तक कुरिया दा मैं हरकत ते बेफना हमें ईद के एक कंत तंगे ईद के खुलीवर तक बे मौज मते बेफना हमें गने तुम गंदने हमें ते बेफना बस गुड़वा दा बे ते बेफना डटो कुरिया दा बे हरकत तक बे मौज मत और मैं हिस्सा खोल देवे आदि एक इतरो और मैं प्रोग्राम बैर वडा के कुद कुद मसे कते से बोर खोल दंगे तो हमें मसे कते बस बैर वडा नवेन और मैं ना मयोग तणका मे खुलीवर वर गिन हरकत है कुरिया दा रसंगे तक बात और कमदो ही कमदो और मैं ना बेफला का कुले मेरे
1: Kurufalia, I mean, Langiria, the jeans of the Langiria, then and a mix coming in the Marhabala, right? Then we say she gave me the other made the Haviru, meaning, Billet Duffy, a bodet young Henunge, Billet Duffy. Then Aya the near the Korea again, the one of the Nicola could a technical muscle, a bod muscle in a relative Adi the show is no fishing alone when a millennia.
0: Hint on a myriad show, my uncle start nugget.
1: Ego the guess some of start could have been waiting alone when you're any current to them.
0: Current to muscle, I gave it to one.
1: Current to muscle, I'm waking him, waking us so I didn't know fishing a mule.
2: Only Russian current to date, sure.
1: I love Pamoli Russian. Then we have a massacre, Korea, the Migadi, the Bori, Amakam Kuku, Ama Kudel Kolakang as I go saying you, and then show it, say again, and Alabama Korea can again the one of the
0: third. It is a current day,
1: Daddy Manager Salang and Uri.
0: We had to make a saying at Genova theater to Hendon and never get a man sound none and so.
2: What sound none does you
1: have?
2: Ah, given a fishing and media, you have Kyaldi Bamia to give me her cat, the Korea, Diogo Havira Hisaba.
1: Me the high end, then if she gave me the

0: हंगार अंगार दो मेंदुन कोरी इकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो होगेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूं
1: हंगार
2: हम एक अन्य दिवे ही राज्य के लड़ों फोनी करूना
3: अनेक कावस बाप्पा हुट्टा लिए फल के लिबे हास कंदिए इतुर बमुन्ने
2: मामा वाहक
4: यूपन लिबे हिंदु माँ बनों थोले मुं इदा इरु हीबे
2: जखम
5: यह गोद दोनों कोंगले करनु माँ
3: रोईफा वा आड़कुन साउदिया बुन्ने
2: मिफदा असरु कदरी ती वाहक ता दिवेराज जगाडु के यूट्यूब चैनलों मिहारु अडोस वाले फेरे दिवेराज जगाडु के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कोला वा

0: हंगार
1: हंगार दो मिंदर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मिंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकने दिवे राज्य चाडू कामिया पिया फारवेरे का वाम बेनुं ता कामिया पिया फारवेरिंग गातों इरुशाद होदं बेनुं ता व्यवहार फुरा कुरम बेनुं ता
1: उन दंकार
3: कम में होने हिर दोए गे हिंदुनो नो गिट फन्ना रहेगा रिपीट होने हिर दोए गे हावीरो हाथरु गिट फन्ना रहेगा आदि आदि तो दोए गे हावीरो हाथरु गिट फन्ना रहेगा
1: इंगा सतर से एक साढ़े स्नो एक किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डे नो मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
3: हाँ मैं कनी दिवे ही राज्य क्या डूं
4: अंगैदी उंगन नैदी मुनि फोई फिलवा दिनों मोगा
5: थे दो वेरी कमाए को
4: एक वेरी कमाए को
5: एरो वेस मिहारो वेस राई तो ना एको राई तो ना एम में गातोगा दिवेहराच्चे के आडू
4: इंगा सतरस्ते का साल इसनुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরবা ফাবে ইন্নাকুম তাদউনা সামিআন করিবান ওয়া হুয়া মাআকুম মানে হামাকাশবরুন তিয়াবামি হুন দুআ কো দন্নবানি আসসাওয়া ওয়ারিগেমবা আদি কুত্তম ওয়ারিগেমবা রাসকালাং গে শেফ একালাং গে ইলম ফুলাগেম ওয়ারিগেমবানি তিয়াবামি হুননা একুগে
1: ರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಡು ಫತಿ ಹತರು ಗಡಿ ತಿರಿ ಸತರು ಮಿನಟು ಗಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ಒಗುತುಗೆ ಪಂಗಿಯ ಪಂಗಿದು
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್